0: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: I have with

0: Your new full-time community radio station. Inspire FM.
1: Move 410 आ गया है. This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा. मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी.
2: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.
3: I have

0: 2-2. Let's go towards the next subtopic that we have. Privacy in relationships, love, trust and passwords.
1: Achha, privacy in relationship. Achha, dekhiye, humare, घरों में एक तरीका होता है, ठीक है. अब मेरे हिसाब से अपने जिस तरह हमारे बड़े कहते थे कि नहीं भी बाप है इसको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. एक तरफ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है. ही इज द वन हु इज गोइंग टू मेक सेवरल decisions regarding the children and their safety and their life.
0: Supervision is always important.
1: ठीक, बिल्कुल. तो आपको उनको हर एक चीज बतानी चाहिए. स्पेशली देखिए, आप अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को, ठीक है, अपने घर की हर चीज आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके मैके में क्या हो रहा है या आपके ससुराल में क्या हो रहा है वहां तक जाने की जरूरत नहीं. वो जो हम कहते हैं ना प्राइवेसी, ठीक है, तो प्राइवेसी की लिमिट्स यहाँ आ जाती है ना. आप अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ चीजें शेयर करें ना, अपनी वो प्रॉब्लम्स शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें. इवन के आप यकीन करें, मेरा पासवर्ड तो मेरे घर में बच्चों के पास भी है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू हाइड. ठीक है, व्हाई वुड आई हाइड समथिंग. हाँ, है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप अपने तक रखते हो.
0: वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वी विल बी बैक सून. डोंट गो एनीवेयर.
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक. कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम. इंस्पायर एफएम. इंस्पायर 105.1 एफएम.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
7: Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, was one of the most trusted and loyal Sahaba of the Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first Mu'adhin in history, appointed by Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, himself.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.

0: But
1: it costs £10 per inch.
0: And that's too expensive?
1: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
0: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
2: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Please do not message or call, as the following programme is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
3: Welcome back to the Family Matters Show. The topic that we are discussing today is technology and family life. Inspire FM 105.1 se aap hame sun rahe hain, 0777-9481-822, 01582-481-822, Inspire FM Luton, ya inspirefm.org pe aap log on kar sakte hain to have much more. You can dial the number or you can leave your message regarding any feedback. If you want to drop any question, you are most welcome. Does loving with someone mean giving them access to everything on your phone? This is another food for thought. That is another question that we are going to leave you with. Kya aisa hona chahiye, Afshan? Does loving someone mean giving them access to everything on your phone? In my opinion, no.
4: No.
3: Yeah.
4: देखें, मैंने कहा ना, आपकी अगर ट्रस्ट की बात है तो आप बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत ट्रस्ट होता है. आप एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं ना, वो जो सिर्फ आप तक होती हैं, आपकी पर्सनल होती हैं. ठीक है, अगर आपके घर में एक दूसरे के पास पासवर्ड है भी, तो मेरा नहीं ख्याल के बगैर पूछे आपको एक दूसरे का फोन खोलना चाहिए. अब मैंने कहा ना, मेरे घर में मेरा पासवर्ड सारे, मतलब मेरे घर में बच्चों के पास भी है, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर या बगैर जरूरत के वो मेरे फोन को हाथ नहीं लगाते. हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड के पास मेरे सारे पासवर्ड्स हैं और वो हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए हैं. आपको पता है कि खुदा ना खास्ता कोई भी अच्छा बुरा वक्त हो जाता है तो इंसान को एटलीस्ट अपने स्पाउस का या अपने हस्बैंड या वाइफ का, एक दूसरे का कुछ पता जरूर हो पासवर्ड्स वगैरह का.
3: बट इन सम केसेस फोन का पासवर्ड जो है वो कभी कभी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फैमिली इशू भी बन जाता है. अफशां, उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि कपल्स नीड टू डिस्कस.
4: बिल्कुल, डिस्कस करें ना, बैठ के अपनी बाउंड्रीज बनाए हैं ना. देखिए, एज अ एशियन फैमिली, ठीक है, हमारे यहाँ तो इसी बात को प्रेफर किया जाता है कि नहीं नहीं, अपने हस्बैंड को सब कुछ बताएं. ठीक है, उनके पास हर चीज का एक्सेस होना चाहिए. ठीक है, एक हद तक हाँ, लेकिन साथ आप इसकी बाउंड्री भी बनाए ना कि भाई अगर बगैर जरूरत के या मेरी इजाजत के बगैर इसको हाथ नहीं लगाना. ठीक है, आप डिस्कस करें ना, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो. ठीक है, तुम्हारी चीजों को मैं नहीं हाथ लगाऊंगी बगैर आस्किंग, विदाउट परमिशन, एंड तुम मेरी चीजों को हाथ ना लगाओ विदाउट परमिशन. और मेरे ख्याल में फोन जो होता है ना, बेशक आपका हो पासवर्ड किसी के पास भी हो, इट्स योर पर्सनल वर्ल्ड.
3: एक्जेक्टली, इवन इफ यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड यू आर नॉट इवन गोइंग आउट ऑफ द हाउस सो मच, आप घर पे ही रह रही हैं, घर के कामों के साथ वही आपकी प्रायोरिटी है, फिर भी एक फोन इज समथिंग दैट That is your property.
4: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी पर्सनल चीज है. इसमें आपकी, देखिए, हमें हर शख्स को ना अपना एक सेफ जोन चाहिए होता है, एक सेफ कॉर्नर चाहिए होता है. अब मेरे इसमें मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरी डायरी होती है. ठीक है, जिसमें आप बहुत कुछ नोट करते हैं, जिसमें आपकी डेट्स भी नोट होती हैं, जिसमें आपकी बाज़ोकात हम अपनी फीलिंग्स भी उस डायरी में शेयर कर रहे होते हैं, बाज़ोकात हम अपनी कोई बहुत अहम बातें, बहुत अहम चीजें उसमें रख रहे होते हैं. That is your personal property.
3: So you have to consider, is it okay to read each other's private messages?
4: No.
3: Should couples share passwords? Is it acceptable to post photographs of your partner without asking? Can you discuss relationship problems with friends online? प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस बिफोर यू आर asking for passwords of your spouse, or you are using their passwords without their consent. Once the matter is out of your house, out of your bedroom, you can't put a cap on it. You can't stop.
4: बिल्कुल, वो तो एक public property बनी है ना. सबसे खतरनाक चीज क्या है मेरे नजर में आजकल, जब बच्चे अपने घर की छोटी छोटी बातें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, अम्मा ने डांटा, अब्बा ने डांटा, बच्चों को गुस्सा आया, उन्होंने किसी दोस्त को पूरी कहानी लिख के भेज दी.
3: And there is one more problem with WhatsApp groups is that के वर्ड्स जो है ना, एक तो हम लिखते रोमन में हैं, हम रोमन को भी अब छोटा कर देते हैं, नहीं को हम NHN करके लिखते हैं. ठीक है, तो वो आप जब सारी अपनी कन्वर्सेशन ऐसी कोड वर्ड्स में करेंगे या ऐसी रोमन में करेंगे जो कि टूटी फूटी है, ठीक है, तो बातों का मतलब बाज़ दफा डिफरेंट हो जाता है.
4: बिल्कुल हो जाता है.
3: और इस इन बातों पे इन डिफरेंट मीनिंग्स जो परसेप्शन होती है, इस पे बहुत खानदान में झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाइयां भी हो जाती हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेती हैं जो कि आपकी एक फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली की हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए जो अच्छी नहीं होती हैं.
4: देखिए, अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने बहन भाइयों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उनके साथ कोई ऐसी बात शेयर कर देते हैं अपनी घर की, कि कल परसों जब वो हमारे स्पाउस के साथ बात करते हैं तो बात बाहर निकल आती है, फिर उसमें कहते हैं कि भाई हाँ भाई, ये बात तो मैंने तुम्हें की थी, ये बात वहां तक क्यों पहुंची. तो मैं सबको एडवाइस करूंगी कि देखिए, अपने घर के प्रॉब्लम्स ना इस तरह से व्हाट्सएप पे लोगों को मत करें.
3: और
4: ना करें,
3: ठीक है. वेरी चाइल्डिश थिंग, दिस इज अ वेरी फूलिश थिंग टू डू. सॉर्ट आउट योर मैटर्स among your family, between your spouse, theek hai, don't talk about, you can ask for an expert advice, but do not talk with everyone in the family. If you are saying something to your cousin or your aunt and believing that they are not going to say anything, aap unse ye keh rahe hain, acha main tumhe ek baat to bata rahi hu lekin aage kisi se mat kehna.
4: ये वो है, हाँ ना, कि ये बड़े कॉमन सा एक सिनेरियो है जो हमारा अक्सर होता है. देखिए, इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा हुआ है, उसकी एक रीजन है ना, उसका एक रीजन है, इसके पीछे एक लॉजिक है ना, पूरी की पूरी.
3: तो आई वाज अबाउट टू कोट सम वर्ड्स फ्रॉम कुरान एज वेल, उसका मीनिंग मैं शेयर करना चाह रही थी, जो कि आपने भी कुछ बोला और उसके साथ ही मुझे याद आ गया कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन रिस्पेक्टिंग पीपल्स प्राइवेसी. सूरह हुजरात में अल्लाह ताला हमें कहते हैं, ही वॉर्न्स अगेंस्ट सस्पिशन एंड स्पाइंग ऑन अदर्स. ठीक है, सो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंटली चेकिंग समवन्स फोन, सीक्रेटली मॉनिटरिंग देयर कन्वर्सेशंस और इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी इज समथिंग वर्थ रिफ्लेक्टिंग ऑन. यू हैव टू रिफ्लेक्ट इफ यू आर अनफॉर्चुनेटली इंडल्ज इन टू दिस प्रैक्टिस, कि आप अपने स्पाउस का, अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का हर जो है वो स्टेप नोट डाउन कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, आज वो कहाँ गए, यू आर स्पाइंग ऑन देम. ठीक है, तो ये देखें कि अगर उनको ये बात पता चल जाती है तो आपका एक डिस्ट्रस्ट का लेवल, एक आपका ट्रस्ट का लेवल जो है ना, वहां से शटर होना शुरू हो जाता है.
4: बिल्कुल, देखिए, छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो बाद में बड़ी बड़ी मसले बनते हैं. ठीक है, अगर आपके स्पाउस का फोन है और ठीक है आपको, मतलब आपको शक भी है, तो ये तो नहीं कि आप उसका फोन उठ के चेक करने लगे. और अगर आप लोग के, मतलब यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन, यू कैन टॉक. ठीक है, जरूरी तो नहीं कि आप चोरी छुपे एक दूसरे के मोबाइल पढ़ें, फिर एक दूसरे से बातें वो करें कि अच्छा तुमने ये लिखा.
3: प्राइवेसी इज नॉट समथिंग दैट यू कैन इक्वलाइज टू सीक्रेसी. ठीक है, प्राइवेसी एंड सीक्रेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स. यू कांट से दैट बिकॉज माय हस्बैंड इज keeping his phone private, his passwords private, that means he is hiding something from me.
4: He might zaruri to nahi hai, zaruri to nahi hai,
3: god forbid extramarital thing going on.
4: मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि, और मतलब ये क्या है कि हमें हर चीज छुपानी है. ठीक है, अगर आप अपने रिश्तों को साफ सुथरा रखें ना, अगर आप हर चीज को ईमानदारी के साथ करवाएं और करें, तब मेरे ख्याल में आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है. छुपाया वहां जाता है जहां आपको पता होता है कि मेरी गलती है.
3: एग्जैक्टली. 0777948182. We are moving towards another very serious subtopic, that is children and online safety, the digital playground. Afsha, aap schools mein chale jaye, colleges mein chale jaye, universities mein chale jaye. There is a lot of emphasis going on
4: online safety.
3: Online safety. How are children doing online? Are they safe over there? Are they playing safe? Are they? Do they know the pros and cons? Do they know how to be online and stay safe? Do they know everything? Are parents well educated in this area? So, हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कॉलेजेस में इवन के बच्चे बड़े भी होते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इस चीज़ पे होता है कि दे शुड बी सेफ ऑनलाइन ठीक है तो ऑनलाइन सेफ्टी आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे हमें उनको कितना सुपरवाइज करना चाहिए ताकि हमें पता हो कि वट दे आर डूइंग ऑनलाइन इफ दे आर प्लेइंग एनी गेम इफ दे आर ऑनलाइन on some social media platform like TikTok, Instagram,
4: देखें,
3: Facebook, कितना हमें supervise करना चाहिए?
4: देखें, एक तो ये कि ना कि आप आजकल चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है ठीक है तो जिस तरह हम बच्चे को पॉटी ट्रेन करते हैं ना जिस तरह हम बच्चे को फूड ट्रेनिंग देते हैं ना बिल्कुल वैसे ही आजकल बच्चों को बचपन से ऑनलाइन सेफ्टी की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी
3: ठीक है ना in the school. For children as well as parents.
4: Parents के लिए भी दूसरी बात देखें आजकल बहुत सारे ऐसे वो आ गए हैं एप्स आ गए हैं बहुत सारे ऐसे चीजें आ गई हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चों के मोबाइल फोन्स पे ठीक है
3: उन
4: हाँ देयर एक्टिविटीज वगैरह आप उनके देख सकते हैं दूसरी बात बदकिस्मती से जो ये ब्लेम गेम होती है ना बच्चों के ऊपर ये बहुत ज्यादा हो जाती है एक बच्चा है ठीक है उससे कोई गलती हो गई उसकी आजकल जैसा आपको पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू डीप फेक के थ्रू क्या कुछ हो रहा है हो जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को कॉन्स्टेंटली उसको घर में बेइज्जत करते फिरे कि तुमने किया है तुमने ये गलती की है नहीं पेरेंट्स डू ठीक है ये नहीं करना चाहिए बच्चे से गलती हुई उसको सबक मिल गया ठीक है आप लोगों का फर्ज है कि अब उस गलती को सुधारें तमाम रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हुए और सबसे जो जो बड़ी बात है ना वो बच्चे के साथ बैठकर उसके साथ डिस्कस कर इस मसले को हल करें ये भी ना कहें तुम रहने दो हम देख लेंगे नो ही शुड नो हाउ टू हैंडल थिंग्स अगर उसके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे कि देखो ये गलती हो गई तुम्हारी पिक्चर्स या तुम्हारी चैट डीप फेक के थ्रू ये बना दी गई है आओ बैठो सोचो अब हम इसको कैसे हैंडल करें
3: आप दैट इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर
4: हाँ उसको पता हो
3: एग्जैक्टली द इंटरनेट इज अ वेरी वंडरफुल एजुकेशनल रिसोर्स चिल्ड्रन
4: कैन बी मिसयूज्ड
3: या इट चिल्ड्रन कैन लर्न लैंग्वेजेस साइंस हिस्ट्री आर्ट कोडिंग एंड सो मच मोर द ऑनलाइन वर्ल्ड हैज रिस्क्स आल्सो ओके तो अभी उन रिस्क्स को सामने रखते हुए हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बच्चों के हाथ से हम गैजेट्स ही ले लें या हमको वी डोंट वांट टू डिप्राइव देम ऑफ ऑल द एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट आर आउट देयर ऑन द इंटरनेट
4: देखिए
3: व्हाट वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इज इफ दे आर यूजिंग एनी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इज सम काइंड ऑफ साइबर बुलिंग हैपनिंग ऑनलाइन ग्रूमिंग तो कोई उनकी नहीं कर रहा ठीक है
4: देखिए आपको ना बच्चों के ऊपर नजर रखनी पड़ती है
3: बिल्कुल
4: अगर आपका बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है ठीक है किसी भी तरह से अगर वो डरा सहमा रहता है वो गुस्से में आ जाता है ठीक है वो अगर आपका बच्चा बिल्कुल काम है लेकिन वो अचानक नेल्स बाइट करने लगता है या वो आपकी आवाज पे एकदम घबरा जाता है वो एकदम जी जी करने लगता है तो आपको उसका ये बिहेवियर नोट करना चाहिए कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन ठीक है
3: या स्कैम्स और फेक अकाउंट्स का हमें डर होता है
4: बिल्कुल आजकल तो तबाही है
3: वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड मेक आवर चिल्ड्रन विजिलेंट आल्सो व्हाइल दे आर sharing any personal information on the internet. There is a big no for the children to share their personal information on the internet. Whoever is asking them, they are not going to share it. ठीक है? हम parents हैं, हम parents भी कितनी दफा हमसे अगर कोई personal information पूछी जाती है, तो हम उसको we are going to second it from somewhere. That is it the correct platform that we have to share our information or not? ठीक है, so we have to put the same kind of vigilance in our children के हम उनको बताएं कि आपने ये and then again contact with strangers if some messages pop up, ठीक है, तो उनको आपने कैसे handle करना है और pressure to look or behave in a certain way because of social media, ये भी एक बहुत बड़ी मैं कहती हूँ कि kind of sickness hai in that is becoming a part of our society ke aap you are going to look the same way to go with the something that is going online
4: trends
3: aapki certain appearance jo ke bacche ke sath nahi achhi lag rahi bachcha us cheez ke bagair zyada pyara aur khoobsurat lag raha hai handsome lag raha hai lekin us
4: bas wo ek virtual world create ho gayi hai na reality se bacche nikalte ja rahe hain aajkal bacche virtual world mein rehne lage hain reality bahut piche kahin reh gayi hai dekhiye ek to ye media ne jo filters ijaad kar diye hain अब देखें फिल्टर आपको बहुत खूबसूरत बना देते हैं अब अच्छी भली बच्चियां होती हैं लेकिन पिक्चर्स खींच के ऊपर फिल्टर्स लगा के और वो पेस्ट पोस्ट कर रही होती हैं ये बहुत अनहेल्दी है क्योंकि ये सबसे पहले आपका सेल्फ स्टीम खत्म करती है इंसान को अपने एक खूबसूरत इंसान को भी अपने आप में हजारों फ्लॉज नजर आने लगते हैं ठीक है ना
3: आप अपने आप को एक ऐसा बंदा प्रोजेक्ट कर रहे हैं दैट यू आर नॉट इन रियलिटी ठीक है
4: हां
3: देन you will always be hiding behind something cover up karne ki aap koshish karenge aap apni future life mein bhi one thing second thing and then you are promoting a very negative impact on any followers if you are having any to unke upar bhi aap ek impression chhod rahe hain ki ji filter lagane mein hi kamyabi hai
4: wo sahi baat hai aap apni apni you are feeling uncomfortable in your skin so that's something very unnatural theek hai aap aajkal wo kaha na ki media ne is virtual world ne filters ne in bachchon ka na zehni sukoon khatam kar diya ek achhi bhali bachchi hogi lekin wo media pe jab ye influence ko dekhti hai theek hai falan ek youtuber hai falan tiktoker hai wo itna halanki unhone filters lagaye hote hain honestly aur wo jo sara wo ek green screens ka aur ye jo piche walls आजकल चले हुए पीछे बैकग्राउंड चले हुए इनको लेके वो वीडियोस बना रहे होते हैं ठीक है और वो बच्चे और बच्चियां उसको फॉलो कर रहे होते हैं वो उनमें वो सेटिस्फेक्शन खत्म हो गई है जो उनके पास है ना अब वो उनको कम लगने लगा है ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो सोशल मीडिया का हमारी जनरेशन पे हो रहा है वो भाग दौड़ में लग गए हैं वो उस भाग दौड़ में लग गए हैं जो हकीकी नहीं है जो
3: बिल्कुल ऐसा ही है अफशा और अपने बच्चों के ऊपर विजिलेंट रहने के लिए सबसे पहले तो आपने उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है ठीक है
4: बिल्कुल
3: इफ दे कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ ब्लेम गेम ठीक है कि बिकॉज यू वर नॉट इन द राइट प्लेस और यू वर नॉट डूइंग दिस और यू वर नॉट डूइंग दैट you are not taking care of yourself that is why this happened theek hai parents should encourage children to speak up if someone makes them uncomfortable agar online unko koi cheez uncomfortable feel ho rahi hai ya koi messages hain jo bar bar pop up ho rahe hain children should be confident enough to talk with their parents about anything of that sort happens children should know that they won't be punished for telling the truth
4: देखिए वही बात आ गई ना कम्युनिकेशन अगर आपके घर में कम्युनिकेशन ठीक है ठीक है आपने अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें तो फिर मेरे उस जगहों पर फिर मामला थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं इजी टू हैंडल हो जाते हैं दूसरी बात ये कि ब्लेम गेम नहीं करनी है किसी भी सूरत में अच्छा बुरा सही गलत जो भी बच्चे ने किया उसको लर्न करने दें उसको एक एक्सपीरियंस उसने ले लिया ना तो आप अच्छा अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चे बुली कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हाँ भाई जाके डील करो ना डील करो ताकि सीखो सिखाएं आप उस चीज को डील करना सिखाएं, ये मत कहें कि सीखो खुद करो. नो, यू हैव टू शो देम योर सपोर्ट, यू हैव टू बी एट देयर बैक, यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स एंड यू हैव टू गाइड देम हाउ टू डील विद दीज थिंग्स.
3: एग्जैक्टली. अनदर फूड फॉर थॉट दैट वी आर लीविंग यू विद लिसनर्स इज, आर वी टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू यूज द इंटरनेट safely, and are we simply telling them not to use it because they can't go without using the internet? They have to use it for their studies, for their social platforms. It is something that if we deprive them of internet, we are going to deprive them of so many things. But we have to teach children how to use the internet safely. Schools are playing their role. Parents should also play their role.
4: बिल्कुल. पेरेंट्स को तो ये पता होना चाहिए कि हमने इन बच्चों को क्या सिखाया. देखिए, आजकल जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे वक्त बदलेगा, वो चीजें जो पहले नहीं थी वो अब आएंगी. इवन के ये गैजेट्स में, इवन के इस वर्चुअल वर्ल्ड में और भी बहुत तरक्की होगी. अभी तो आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि AI आ रही है, रोबोट्स आ रही है, और ये चीज भी टेक ओवर हो रही है, वो चीज भी. हमने तो अभी से अपने बच्चों को समझाना शुरू करना है ना कि आने वाले वक्त में उन्होंने खुद को कैसे महफूज रखना है, आने वाले वक्त में उन्होंने अपनी कैसे केयर करनी है.
3: और ये मत कभी एज अ पेरेंट नेवर लेट योरसेल्फ डाउन कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे. इफ यू आर डूइंग योर पार्ट विद ऑल द सिंसेरिटी, दे आर गोइंग टू लिसन, दे आर गोइंग टू टेक द वैलिड पॉइंट, दे आर गोइंग टू डिस्कस everything with you. Remember all the, every time that dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai, par nahi taqate parwaaz magar rakhti hai. Apne bachchon ko full sincerity ke sath samjhayein, pure dil ke sath samjhayein. Afsha, we are moving closer to the sign off time. Hamare program ka waqt khatam hone wala hai, lekin हमारे पास और बहुत से ऐसे दो तीन टॉपिक रह गए हैं जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वर्थ वर्दी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. लेकिन बाकी टॉपिक्स की डिस्कशन में हम उनको छोड़ना पड़ रहा है, एंड मे बी वी आर गोइंग टू इंक्लूड देम इन आवर
4: नेक्स्ट एपिसोड.
3: चलते चलते How to build your connection with your family. हमने आपके साथ tips भी share की, ठीक है, और आपके साथ hacks भी share किए.
4: देखिए, हर family जो होती है ना, उसमें ये जो media है, ये जो digital media है, ये जो आजकल की चीजें हैं, gadgets हैं, ये बड़ा important role play करते हैं. कहीं अगर इसको सही तरीके से use किया जाए तो ये आपके बच्चों की safety भी है. आप घर से बाहर बच्चे निकलते हैं, आप अगर आप लोगों के आपस में अच्छे वो हैं तो आप अपने बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं किधर है, कहाँ है. आजकल आप देख लें, आप कैब कराते हैं तो कैब की लोकेशन ट्रैक हो सकती है. तो अगर आप इसको सही यूज करेंगे तो आपके बच्चे सेफ्टी भी इसी से ही है.
3: यूज इट वाइजली, यूज इट टू योर बेनिफिट, नॉट टू हार्म योरसेल्फ और योर चिल्ड्रन.
4: बिल्कुल. इसमें ये तो है, आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको साथ ये जो आजकल डीप फेक आई हुई है, इसी तरह जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, इस तरह की चीजों का भी आपको पता होना चाहिए. अब थोड़ा सा ना रिसर्च किया करें, रिसर्च जरूर करें.
3: एग्जैक्टली.
4: आपने आपको अपडेट जरूर रखें.
3: और चलते चलते हम एक और चीज को टच करना चाहते हैं कि इफ यू आर इन अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, set that boundaries as well. When you are online, it is seen that the boundaries are being crossed. Okay, inappropriateness takes over. What do we consider inappropriate online behavior? ये भी जरूर सोचें. This is also a food for thought. Before we leave, are there boundaries around private messages? ठीक है, when we are talking about चिल्ड्रन सेफ्टी ऑनलाइन, तो हमने इस चीज को भी देखना है कि हमने बच्चों को अगर एक आजादी दी हुई है तो वो कितने हद तक दी हुई है. हाउ डू वी फील अबाउट डेटिंग एप्स एंड ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स? व्हाट डज इमोशनल लॉयल्टी मीन टू अस, द हाउसहोल्ड्स दैट हैव चिल्ड्रन इन देयर टीनेज और आर ग्रोइंग अप, 20s में हैं, हु आर सेटलिंग टूवर्ड्स देयर यू नो करियर वाइज एंड एवरीथिंग, they will soon be going into a marriage or a relationship. So unki safety kahan tak parents सुपरवाइज करते हैं डेटिंग एप्स के थ्रू, ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स जो होती हैं उसमें आप अपने बच्चे को कितना नॉलेज दे रहे हैं.
4: बिल्कुल, ये सारी चीजें इसी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है. ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो आजकल आपको अगर हम नॉलेज की बात करें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है. मतलब वो चीजें जो किसी जमाने में हम किताबें ढूंढ ढूंढ के निकाला करते थे, खासतौर से अपने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, आजकल तो गूगल में एक आप करें, एक वर्ड सर्च में जाएं और आपको पता नहीं कितने रेफरेंसेस वो दे देती है. ठीक है, लाइफ इजी तो बहुत है लेकिन लाइफ डिफिकल्ट भी बहुत है. लाइफ इजी हो गई है लेकिन अब आपको हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि जहां हर चीज की अगर कुछ अच्छे साइड्स होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं. जिसी तरह अभी हमने बात की है कि बुलियंग होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है. ठीक है, इवन एआई से बाज लोग अपने, आजकल तो अनफॉर्चुनेटली एआई फ्रेंड्स आ गए हैं. बच्चे जो पहले लोगों से, इंसानों से इंटरेक्ट करते थे, आजकल एआई को फ्रेंड्स बना रहे हैं.
3: और आप ये भी देखें कि जिस वक्त भी आप किसी भी ऐसे होते हैं, ऐप पे होते हैं जो कि एआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको अगर फीड करते रहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट एआई जनरेटेड थिंग स्टार्ट्स टू नो यू.
4: हाँ, वो आपकी जारी बात, आपकी पूरी हिस्ट्री उठा रहा है ना.
3: हाँ, तो वो जब भी आपके साथ नेक्स्ट टाइम चैट करेगा तो दैट इज गोइंग टू मॉडिफाई इटसेल्फ. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है और रिकनेक्ट विद द पीपल हु मैटर. ऑफकोर्स that brings us towards the end of the Family Matters show. We are going to see you meet you the next week with a brand new topic, with a brand new episode, inshallah. Thank you so much for spending this time with us. Until next time, take care of yourself. Faaslon ko mitane ka naam tha ye zamana, magar apno se door kar gaya mobile ka fasana. Hajra Khan signing off and
4: Afsha Irfan also signing off. Acha jaane se pehle, Thank you so much.
5: इसके बाद प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी साहब का प्रोग्राम सदाए तकबीर पेश किया जा रहा है. मजीद नशरियात के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1.
6: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims. Malcolm X was an American Muslim minister and human rights activist who was a prominent figure during the civil rights movement. A spokesman for the Nation of Islam until 1964, he was a vocal advocate for black empowerment and the promotion of Islam within the black community.
7: Did you see that guy on TV?
8: What, that No Comment guy?
7: Yeah, he was sick. What was his name?
8: I think it was Atiq Malik.
7: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
7: Liberty Law, there when you need us most.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
12: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
13: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
14: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
3: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM।
4: हेलो।

0: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Aaj kaise yaad kiya aapne? Ye to baaton se baat nikal hai.
2: आज नहीं मैं तो शो सुनती हूँ लाइक व्हाटएवर टाइम आई गेट यू नो लास्ट वन आवर यूजुअली बिकॉज़
1: कॉल करने से पहले भी तो कुछ सोचा होगा ना कुछ तो होगा दिमाग में
2: आई लिसन टू योर शो ऑन वॉर दैट वाज द लास्ट वन आई लिसन एंड आई वाज ट्राइंग टू लिसन दैट शो ऑन मंडे
1: वॉर वाले शो से क्या सीखा
2: वॉर वाले शो से आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड इज व्हाट यू एक्सप्लेन्ड आई वाज यूज्ड टू थिंक व्हाई पीपल व्हाई दिस कंट्रीज फाइट ऑल द टाइम एंड यू सेड दैट इज आई फील लाइक इट्स टू मच ड्रामा ये टू मच मैस डिस्ट्रैक्शन इवन डिस्ट्रैक्शन करना होता है और आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड नोबडी वांट्स टू दिस टू कम टू एन एंड यू नो सो आई मीन लाइक देयर इज सो मच I don't know. I, you know, all this is.
1: चलते साथ साथ जब जहाँ और आदमी इतना इल्म हासिल करता है ना इल्म जो है ना उसकी कोई एंड नहीं है और आप कभी आपको लगता है ना कि इल्म बहुत हो गया या मेरे लिए इतना काफी है इल्म कभी काफी नहीं होता.
2: No, and I feel like you know, I feel like I have to learn a lot.
1: कोई बात नहीं ये तो आपको क्या सोक्रेटिस भी कहता था जब उसको बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसने कहा था आई नो दैट आई डोंट नो नथिंग तो और जब हुजूर पाक से पूछा गया कि इंसान को इतना इल्म जब आ जाएगा इतना वो खोज लेगा गारों से निकल के महल बनाएगा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएगा वो ऐसे करेगा वैसे करेगा तो उसके पास कितना इल्म आ जाएगा खुदा के इल्म में से कितना इल्म आ जाएगा. तो उन्होंने कहा जैसे समंदर में आप उंगली डालें बाहर निकालें तो उसके ऊपर जो कतरा रह जाता है बस उतना आएगा लेकिन वो इतना ज़्यादा है क्योंकि खुदा खुद सरापा सर से पाँव तक इल्म है. तो जितना इल्म जो है ना और वक्त और इल्म वो कहते हैं वक्त को बुरा मत कहो मैं वक्त हूँ. इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है अजियत देता है जब वक्त को गाली देता है कहते हैं वक्त बहुत बुरा आ गया है तो वो रब ही वक्त है रब ही इल्म है जिस और एक वक्त में बहुत कुछ है. तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है समझते जाना है खुद को जानते जाना है अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझते जाना है जो मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करना है सिस्टम को ट्रिगर करना है अपना रोना धोना बंद करके दुनिया को देखना है कि दुनिया जब आप दुनिया की तकलीफ परेशानी और मसाइल देखेंगे ना आपको अपना कुछ भी तकलीफ नहीं होगी. मुझे कोई तकलीफ नहीं है पिछले कितने ही 10-15 साल जब से मुझे इस बात की समझ आई है. मेरा एक दुख भी इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को मैं देखता हूँ सुनता हूँ और परेशानियाँ मैं उनकी देखता हूँ जैसे उनकी नींद है जैसे वो सुबह उठते हैं जैसे उनके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है जैसे वो चीज़ों की उनकी हिर्स हवस ख़त्म ही नहीं होती. जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे उन पे इतना तरस और तकलीफ़ आती है मुझे अपना सब कुछ भूल जाता है ना कोई दर्द याद रहता है ना किसी का मर जाना याद रहता है ना किसी का छोड़ जाना याद रहता है ना किसी का तकलीफ़ धोखा कुछ भी कुछ नहीं मुझे याद रहता बिकॉज दुनिया में इर्द गिर्द इतनी तकलीफ़ इतनी परेशानी और इतने मसाइल हैं कि आप हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहते हैं. हर रोज एक जन्नत का दिन है एक मौका है एक चांस है.
2: आई एग्री यू नो एक्चुअली दैट्स व्हाट आई फील लाइक यू नो व्हेन आई थिंक ऑल सी अराउंड एज यू सेड आई फील लाइक इवन इफ इनफाइनाइट टाइम्स आई से अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज लेस बिकॉज वी आर सो ब्लेस्ड आई मीन वी आर सो ब्लेस्ड इफ यू सी यू नो द व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू अल्लाह सुब्हान तआला हैज गिवन टू अस I mean, we cannot complain about anything, honestly.
1: और अमेरिका में हम जहाँ रह रहे हैं ना ये अगर अपना खाना सही कर लेना कम वक्त ठीक है पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स और ये GMOs और ये सब निकाल लें तो इसकी दीवार के साथ जन्नत है इतनी जबरदस्त जगह है ये ठीक है.
2: Yes, we have. I mean, that's what I do. Sometimes when you feel like I feel a little down for something or whatever, honestly, I have no reason to be down. You just count your blessings, and when you start counting that, you feel like Allah Subhanahu Wa Taala has given you everything. I mean, what more you want? What can? Okay, this is the time now. Just to give to people.
1: Of course.
2: That's what it is now. Just to give whatever you can.
1: और जो वो थोड़ा थोड़ा भी होगा वो प्यार से होगा मुस्कुरा के देना भी होगा लोगों से बात शेयर करके देना होगा इल्म जो आपके पास है उसके बारे में शेयर करना होगा लोगों के साथ चलना होगा छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करना होगा. एक होती है यू नो द आर्ट ऑफ लुकिंग पे गौर करना, ध्यान देना, एक होती है द आर्ट ऑफ ओवरलुकिंग। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक की जाती हैं, लेकिन जब आप कोई सिस्टम बना रहे होते हैं या कोई चीज़ों को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त ओवरलुक नहीं करना है। इंसानों में जो कुछ है उस पर गौर से हर चीज़ को द आर्ट ऑफ लुकिंग यूज़ करना है, और जो रियलिटी है हर बंदे की वो सब कुछ सामने रखना है। फिर उसके बाद जब आप सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद जितने अच्छे लोग मिलते हैं उनका दिमाग कैसा है, दिल कैसा है, उसके बाद आपने ओवरलुक करना शुरू कर, छोटी मोटी गलतियां, परेशानियां, ये मसाइल, ये आपने ओवरलुक करते रहने, क्योंकि आपने ज़िंदगी आगे चलानी है, बढ़ानी है, रिश्ते आगे चलाने हैं। मेहरबान हमारे साथ रेडियो आज ही रौंदी।
2: नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं?
2: नमस्ते, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक क्या जो भी है। तो हम कह रहे हैं इसी सब इसी टॉपिक को फिर शुरू किया।
1: कोई बात, हमने आज
2: यही
1: तो
2: कहानी यही कहानी आप बोलते बोलते जितनी भी बातें आप बताए कल सब में हम लोग सुने, ऐसे बहुत सी चीजें मालूम हुई, क्योंकि उतना तो हमको कभी मालूम भी नहीं था, जबकि हमारे फादर वार में थे, फर्स्ट वार में थे ना सेकंड। तो जब गोलियां वोलियां लगती थी तो वो देख करके, हम सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में, छोटी लड़की को क्या पता सब बातें, तो बड़ा दुख लगता था। गोली जहां जहां पर दागे पड़े हैं पंखा के और पीछी पर, तो वैसे ही है कि ये सब तो हमेशा से होता रहा है और लोग मानेंगे नहीं, सभी लोग करते रहेंगे, इसका तो कोई किनारा ही नहीं स्टॉप होने का। तो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन लोगों का विचार जो है तो अपने को सुधारना चाहिए, अपने को कोशिश करना चाहिए कि प्रेम से रह करके कितना फायदा है, तो कोई सोचता नहीं है। और आप इतना सब बताते हैं तब भी उन लोगों को समझ नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं आजाद जी। आप परेशान यहाँ जो है, यहाँ पर मैं किसी के मुंह से यहाँ पर तो अभी तक मिली भी नहीं बहुत से लोगों को, लेकिन इवन माय हस्बैंड भी कुछ नहीं बताया, न कहे न कुछ पूछे।
1: आपके हस्बैंड ने ये जान लिया होगा ना कि न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा ढल न जाए कहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जिनके जिनके साथ आपकी खामखा की लड़ाई है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता वो लड़ रहे हैं, ऐसे कई बदबخت लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उनको पता ही नहीं होता। वो जो लोग अपने आप से लड़ते हैं ना और ख़ुद से हारते रहते हैं, वो दूसरे लोगों से लड़ते रहते हैं। सो ये चीज़ें भी समझनी है साथ साथ, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं। किसी को साहब से उन्होंने कहा, और पिछले एक दो दिन से पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग, बड़ी परेशानी में, और यहाँ पर भी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे वो भी पूछ रहे हैं जी कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए आप लोगों को अपने जो ट्रैवल्स हैं जो भी, क्योंकि ये काम अब बढ़ गया है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो सवाल पूछा गया था कि जंग होगी या नहीं, तो जंग नहीं होगी लेकिन लड़ाई होगी, ठीक है, लड़ाई होगी और लड़ाई चलती रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि मैं साथ साथ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस बात से रिलेटेड तो बहुत सारा, क्योंकि इस वक्त मीडिया जो फैला रहा है, अल्लमान अल हफीज़, कख नहीं पता है मीडिया को, ऐसी फेक न्यूज़ का एक ड्रामा चल रहा है और ऐसी ऐसी बातें घर से घड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह कि अगले दिन शर्मिंदा भी नहीं होते, मतलब इतने बड़े बड़े झूठ दोनों तरफ से, कोई हद होती है ना झूठ की, कम से कम कोई ऐसे झूठ बोलो जो माने भी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझते हैं हम भी, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो नहीं सकता, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलें, एक जब से इंसान है तब से जंग है, ठीक है, और ये जंगें चलती रहेंगी, जब तक हम और आप जिंदा हैं ये जंगें चलती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ होते हैं जो कि आजकल के कोई 1940s या 70s थोड़ी चल रही है, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा कैमरा, हर बंदा गन लेके फिर रहा है, कैमरा लेके फिर रहा है, वो हर वक्त वो हर चीज़ देख रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो उसको आप छुपा कर और झूठ नहीं बोल सकते दोनों तरफ से। करते हैं बात, रेडियो आज़ादी रौंदी। हेलो,
3: अस्सलाम
1: कहाँ रह गई थी?
3: थोड़ी बिजी हो गई थी, थोड़ी ट्रैवलिंग आ गई थी।
1: अच्छा, हमारी अगले हफ्ते आएगी, हम आपको फोकस पे शो कराएंगे। और हमने ना, और हम सब लोग, फिर आपको पता है आप नहीं आती तो फिर मुसीबत बन जाती है, लोग पूछते बिल्कुल ऐसे जैसे आप ड्रोन ना आए इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तानी वैसे ही कैमरा लेके ऊपर देखते रहते हैं कि भाई ड्रोन किधर है।
3: हाँ,
4: معمولی انسان
1: وہ اب میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں لوگ, تو آپ تو بڑے لوگ ہیں.
4: نہیں آپ بڑے لوگ, میں تو بہت معمولی. کون ہے
1: بڑے لوگوں کی؟ آپ کو پتا ہے بڑے لوگوں کی سب سے پہلی پہچان یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتے. اور آپ کو پتا ہے چھوٹے لوگوں کی سب سے بڑی کیا نشانی ہوتی ہے؟ وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں. بس یہیں سے آپ کو پتا ہے حسین آدمی کی کیا نشانی ہوتی ہے؟
4: نہیں,
1: وہ کبھی خود کو حسین نہیں سمجھتا. آپ کو پتا ہے کوجے اور انسیکیور آدمی کی کیا نشانی ہوتا ہے؟ اور تعریفیں کرتا رہتا ہے اپنی. تو یہ سیدھی وہ میں جو کہتا ہوں نا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا, میں کہ اگر آپ کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ مارگریٹ تھیچر تھی نا, بڑی اچھی لائن یوز کی, اگر لیڈی کو یہ کہنے کی کوشش وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں لیڈی ہوں, تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیڈی ہیں یا جینٹل مین ہیں, خود پتہ لگ جائے گا.
4: اچھا زیادہ جی, کتنی عجیب بات ہے, یعنی آپ جتنے لوگوں سے ملیں وہ خود اپنی تعریف خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, کانسٹنٹلی بتا رہے ہوتے ہیں, بیکم سو انوائنگ, اسپیشلی مجھ سے نہیں برداشت.
1: لیکن وہ نہیں, مزے کی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو کہنے دیں. لیکن کس قسم کی تعریفیں نارملی آپ دیکھتی ہیں لوگ کرتے ہیں؟
4: زیادہ نا, ایک تو میں اتنی, یعنی ایک تو اپنے کیریئر کی, بس ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر بچوں کی, زیادہ بچوں سے میں بہت پریشان ہوں.
1: آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے لوگ کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کی اتنی تعریفیں؟ کیونکہ ان لوگوں کا پرائز پوزیشن جو ہے نا, وہ ان کے بچے ہیں جن کی فری ول ہے, اور وہ زیادہ تر ان کے قابو میں نہیں. اور زیادہ تر بچے, میں کم از کم اس وقت نا 15 بچے ہیں میرے دوستوں کے, جوان بچے اور ہمارے بچے سب, ٹھیک ہے. اور ہم نے جیسے اپنے یہ بچے, ہم جو چھوٹے دو پال رہے ہیں, 20-22 سال کے ہو گئے ہیں, تو وہ ہر بات مجھ سے کرتے ہیں. ہر بات کا مطلب ہے ہر بات تو وہ کرتے ہیں. اور باقی جو بچے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں, میں میرے دوستوں کے پیرنٹس ہیں, میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں. کوئی کچھ ایسی باتیں جو ان کے پیرنٹس نہیں کہہ سکتے, وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں, میں بڑے آرام سے بڑے سہل پسندی سے کہتا ہوں, اور ان کو یہی پتہ ہے میں ان سے پیار وغیرہ بھی کرتا ہوں. لیکن ان میں سے سارے ہمارے جو بچے ہیں نا, انہوں نے چرسوں سے ویڈ کو نہیں ایکسپیریمنٹ کیا, یہاں سب نے کیا ہوا. انہوں نے ہمارے وہاں کے جو بچے ہیں کئی جگہوں کے, ابھی شہروں کی بات میں نہیں کر رہا, شہروں میں تو ہمارے بچے بہت امیرکن اور انگلینڈ کے بچوں سے بہت آگے ہیں, ٹھیک ہے, ہر برے کام میں, غلط کام میں. پیرنٹس بیچارے, آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو میرے بچے بھی نہیں کرتے ہوں گے, یا ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے بائی دا وے اپنے بچوں کے بارے میں. ہم ان کو کہیں سے ایک ٹیوٹر رکھتے ہیں, قرآن پڑھاتا ہے ان کو, پاکستانی اور مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر ایک دن انہیں کچھ عجیب سا دل کے دورے پڑ جاتے ہیں, پھر وہی چیزیں جو کبھی بھی نہیں کہتے تھے, پھر اس کو کور کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے. پھر وہ لوگ کمیونٹی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, یہ کہہ کے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا, یہ ساری زندگی پھر ایک دوسرے کو بھی شکل نہیں دکھا سکتے. یہ ہوتا ہے جھوٹ میں رہنے کا اور ریئلسٹک نہ ہونے کا. تو جب آپ کی اولاد دیکھیں, جی میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, میں اس دنیا میں, مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے بڑے ڈیکیڈز ہو گئے, میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک اپنے ماں باپ کی فیملی کی طرف سے سب سے زیادہ پیار دیکھا, وجہ جو بھی تھی مجھے نہیں پتہ, نہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی ماں کی طرف سے, جو ٹوٹلی ڈفرینٹ لوگ ہیں, ان سے کی طرف سے سب سے زیادہ پیار مجھے ملا. اپنے فادر کی طرف سے جو فیملی ہے, وہ سب سے زیادہ پیار مجھے ملا. میں جب میں نے ایک دو پروفیشن جوائن کی, ان میں مجھے بہت پیار ملا, مجھے اسپیشلی جو جونیئرس تھے وہ اور باقی لوگوں سے. میری لوگ بہت عزت کرتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں, میرے نام پہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے کروائے, بہت ساری چیزیں کی لوگوں نے, ٹھیک ہے. لیکن میں دنیا میں ایک بندے کا, ایک انسان ایسا تھا جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں اس کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے. دو بندے کہہ لیں, خلیق صاحب اس میں شامل کر لیں, دو تین لوگ کر لیں. میں کسی بھی ایسے بندے کا جو اس وقت زندہ ہے, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ وقت پر سٹینڈ لے گا, یا اس کے دماغ کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی کا سٹرکچر, یا اس کے اندر رب کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے. میں کسی کو نہیں جانتا, میں کسی ایسے ہندو کو نہیں جانتا, کسی کو بھی نہیں جانتا جو کہ اصل میں ہندو ہو اور ویداس سیکرڈ وزڈم کی جو بکس ہیں, رگ وید, یجر وید, سام وید, اتھر وید, اگر میں اس کو سامنے بٹھا کے 10 سوال اس سے پوچھوں, وہ ایک میں بھی کوالیفائڈ نہیں. میں کسی بھی ایسے مسلم کو نہیں جانتا کہ جب میں اس سے رب کو, جس رب کو میں کتاب سے پڑھ کے جانتا ہوں, میں 5-10 کوسچن نکالوں, اس میں سے وہ ایک کو بھی کوالیفائی کر جائے. प्रैक्टिकली, कार्रवाई और ड्रामेबाजी में नहीं। मैं किसी एक ऐसे क्रिश्चियन को नहीं जानता अपने, और मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, बहुत तमाम रिलीजन के लोगों को मैं जानता हूँ, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बेसिक्स खोल के उनसे सवाल करूँ, उनको पता ही नहीं। तो इससे समझ आती है कि लोगों के साथ रिलीजन की लड़ाई हो ही नहीं सकती। जब हम मुस्लिम हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम हिंदू हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम क्रिश्चियन हैं ही नहीं तो लड़ाई किस बात की है। बेसिक्स में ही हमें अभी तक नहीं पता, किताब खोलकर देखी ही नहीं गई, उसमें आप जब देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि हम हमारे रिचुअल्स भी उन तमाम इबादात के खिलाफ हैं जो उसमें लिखी हुई हैं। बाकी बातें तो बहुत बात की, हम लोगों के बारे में हमें ना औलाद से मोहब्बत, जब हमें मोहब्बत का सर पैर ही नहीं पता तो औलाद से जो भी हम मोहब्बत कर रहे हैं वो सब की सब गलत है। हमें जब पता ही नहीं है औलाद को पालना कैसे है, बड़ा कैसे करना है, ये कितने, मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान को इस दुनिया में अगर ये पता चल जाए कि एक इंसान को पैदा करके बड़ा करने के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और खुदा की कहां कहां पकड़ हो सकती है, आप यकीन करें कोई भी जागा हुआ माइंडफुल होश में आया हुआ बंदा औलाद ही ना पैदा करे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग प्लांट्स नहीं रखने के नहीं इस काबिल कि वो प्लांट रख सकें। मैं जब अपने दोस्तों को, उनके बच्चों को देखता हूँ और लोगों को अपने इर्द गिर्द बच्चे पैदा करते हुए देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ। इन लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए तो जहनी तौर पे अभी तक बच्चे हैं। ये छोटी सी इंडिया पाकिस्तान के आपस में झड़प हुई है, इसमें ऐसे ऐसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं और इनके भी बड़े थे। इंसान होने के नाते शर्म आती है मुझको कि इस दुनिया में, इस ज़माने में भी हम इतने छोटी छोटी सोच के मालिक लोग हैं और हमें कुछ नहीं पता। और जिस रिलीजन के ऊपर हम इतनी बातें करते हैं, जिसके अंदर 150 फिरके हमने बना लिए, स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग, जिसमें हम अपने अंदर ही लड़ते रहते हैं, और हम इतना नहीं सोच सकते कि जब हम लोग गाय के ऊपर, मुकद्दस गाय के ऊपर इतना लड़ते हैं लोग इंडिया में और लोग पाकिस्तान में भी, लोग क्या क्या फजूल बातें बनाते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी गाय का मुकद्दस होना, और वही गाय जिसमें मुकद्दस होने पे कितने मुसलमानों को, कितने हिंदू आपस में लड़ चुके हैं और कितने नुकसानात हो चुके हैं, उसमें बीफ के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नंबर वन या नंबर टू इन द वर्ल्ड इंडिया है, और वो बिज़नेस मुस्लिम ज़्यादा नहीं कर रहे, वो जैन भी करते हैं, वो हिंदू भी करते हैं, और ये नंबर जो सबको पता है, जाके इंटरनेट पे चेक कर लें, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता। मतलब हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे है, सब का सब हिपोक्रेसी पे है। और अगर उस क्वालिटी, उस हिसाब से मैं देखूं इंसान को, तो ये इंसान जो है ना, यकीन करें, सिर्फ चलता फिरता दो टांगों पे, इसको चार पाँव पे जैसे किताब में रब कहते होना चाहिए था, और जानवरों से ही रिश्ते विश्ते करके उसी तरह खाना पीना चाहिए इसको, उसी तरह अपने आप को साफ रखना चाहिए, वही बेसिक्स इसकी नीड्स होनी चाहिए। और जैसे जानवर अपनी औलाद के साथ करता है, वैसे हम लोग भी अपनी औलाद के साथ कर रहे हैं बेसिक चीज़ें। और सूअर को तो ये भी नहीं पता होता कि अपनी औलाद के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ पैदा करता है। और इसी तरह सांप अपने बच्चे खा जाता है। तो हम लोग, कई लोग जो हैं वो अपनी औलाद को खुद खा जाते हैं, उनके अंदर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डाल के, इंडियन पाकिस्तानी डाल के, और मुसलमान को तो समझ ही नहीं आई कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है, एक हद के सरहद का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। वो तो हर वो बंदा जो रब को रब मानता है, जो अपनी विल सबमिट करता है, वो दुनिया के किसी रिलीजन में कहीं से भी उठ के आएगा, कभी भी पीछे हज़ारों साल पहले उसका कोई भी रिलीजन था, जब उसने कह दिया रब एक है, पैगंबर ये हैं और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, बात ही ख़त्म हो गई, कोई लाइंस तो हैं ही नहीं, सरहदें तो हैं ही नहीं। तो ये कहते हैं जी कि म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं होती, आर्ट की कोई सरहद, अरे भाई रब के बंदे की कोई सरहद नहीं होती, रब की कोई सरहद नहीं होती, ये तो बहुत पहले का, 1450 साल पहले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, हम जब फिर कहते हैं जी, यकीन करें कई लोग मुझे कहते हैं इस तरह करके कि ना आप हमें इंसान नहीं समझते, कई दफ़ा हमने महसूस, सच मैं कहता हूँ हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको इंसान नहीं समझता तो मैं इतनी जान क्यों मार रहा हूँ 15-20 सालों से, मुझे तो ये सब पता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हालात हैं, جو ایکوریٹ لوگ جن کو اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے ان کے گھر میں اولاد ہے. جو لوگ انسان ہونے کو بڑی صرف کھڑے ہونے کو, بیٹھنے کو, انگریزی بولنے کو, اردو بولنے کو, ڈگریاں اٹھا لینے کو انسان نہیں کہتے آپ. یہ سب کا سب ہمیں جب سمجھ آئے گی, ہر بندہ کونڈ ہے. ہر بندے دیکھیں, میں نے آج تک اتنے لوگوں سے ڈسکشنز کی ہیں, اتنے لوگوں سے, ہر بندے کا کہیں نہ کہیں جا کے ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں سے اس کے اندر کا مسلم جاگ جاتا ہے, ہندو جاگ جاتا ہے, انڈین جاگ جاتا ہے, پاکستانی جاگ جاتا ہے, فلاں جاگ جاتا ہے. رب کا ایلیمنٹ کبھی نہیں اس کو جاگتا اس کا, کیونکہ رب کے ہم نہ جانتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اس سفر کے اندر ہیں. جب تک یہ لائف رب کو نہیں جانیں گے, خود کو نہیں جانیں گے, دنیا کو نہیں جانیں گے, زندگی کو نہیں جانیں گے, ہم کبھی مضبوط رشتے نہیں بنا سکتے. اتنے لوگ عشق کرتے ہیں, میں ڈرامے تھک گیا ہوں, یہ سنی شیعہ کی محبتیں, پھر پوری فیملی سے لڑائی, اور اس کے بعد جب بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے, اور اس کے بعد دو چار سال کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر کھچا کھچائی, ایک ان کو سنی بنانے پہ تلا ہوا ہے, ایک ان کو شیعہ بنانے پہ تلا ہوا ہے. یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ پیغمبر کا تو کوئی سنی شیعہ چکر نہیں تھا. جب مجھے پتا چلا سنی شیعہ کیا ہے, میں کہاں پیدا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, میں نے تو یہ کام ہی ختم کر دیا. میں تو نہ سنی لکھتا ہوں, نہ شیعہ لکھتا ہوں, تو نہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ یہ تو چکر ہے ہی نہیں. تو یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. جب آپ کو ایکیوریٹی پتہ چلے گا, حضور پاک نماز کیسے پڑھتے تھے, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیسے پڑھنی چاہیے. ہم کو ابھی تک کسی نے ریسرچ کی ہے کہ خدا کا بندہ جس کی وجہ سے سارا پیغمبر ہے, ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا, اور ہم اور ہمارے ہزاروں سالوں سے جو بھی یہ ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں, کیونکہ وہ چلا چلایا ہوا سارا کام ہے. تھوڑی سی کوشش کر لینا, آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی اٹیک ابھی نہیں ہو رہا یہاں پر, بیسک نیڈز ہماری پوری ہیں, تھوڑی سی ریسرچ کر لینا, تھوڑی سی کاموں کو فگر آؤٹ کر لینا. اور آپ کو پتہ ہے یہ والی جو حدیث ہے کہ جو انسان رب کو نہیں مانتا, وہ اگر فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ رب ہے یا نہیں, وہ صرف اس انٹلیکچوئل پرسوٹ میں اپنی زندگی گزار دیتا اور کوشش کرتا رہتا ہے. اس میں وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ جنت کا پہلا حقدار ہے. صرف کھوجنے کا اتنا اجر ہے, اتنی ویلیو ہے. یہ دوسروں کو اپنی طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ خود ہی نامکمل انسان ہیں, دوسرے نا کو نامکمل بنا کے آپ ڈائریکشن دکھا کے اگلے کی ڈائریکشن گم ہو جاتی ہے, نہ آپ ساتھ چل سکتے ہیں, نہ چلا پاتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کی کوئی تک ہی نہیں ہے. جنگیں تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر میں کچھ دن جنگ کو کھول کے رکھوں اس جنگ کو, تو آپ کو پتہ چلے یہ جو ابھی چل رہی ہے یہ کہاں شروع ہوئی تھی, یہ کس کے ٹیبل پر شروع ہوئی تھی, یہ کس جگہ پر ہوئی ہوگی, اس وقت جو بلاکس ہیں اس میں کہاں پر آپس میں مل کر کی ہوگی. آج سے 5-10 سال کے بعد جب ڈاکیومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا, تو ٹرمپ کے زمانے میں بتا رہا ہوگا, یہی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہاں سے یہ دو بندے, یہ دو ملک تھے, انہوں نے ایسا کہا, ہم نے بیچ میں سے ان کو ایسے کہا, اور ہم نے کہا بس اتنا اتنا کر کے پیچھے ہو جاؤ. یہ سارے کا سارا آپ کو ایک دن ڈی کلاسیفائی ہو کے مل جائے گا. یہ پوری جنگ کی ایک حقیقت ایک ٹیبل کے اوپر ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے. جیسے ایک فلم ہوتی ہے, فلم ایک ٹیبل کے اوپر بنتی ہے ساری کی ساری, اس میں ٹیئر جرکرز ڈالے جاتے ہیں, ایموشنز کہاں سے آئیں گے, کون سے ڈالیں گے, یہ ایک لائن ہوگی, یہ کانفلکٹ ہے اس کا, یہ اس کا ریزولوشن ہوتی ہے. اس میں پھر اس کے بعد آتا ہے کس کو رکھیں گے, ان ایکٹرز کے نام کے اوپر پھر پیسے لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کس کو رائٹس دیے جاتے ہیں, وہ سب مل ملا کر فلم پہلے سے پتہ ہوتی ہے, 100 ملین کی ہے, 200 ملین کی ہے, 23 ملین کی ہے, 50 ملین کی ہے. اس سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے میں 23, 40, 50 اس کے جتنے بھی بننے ہیں یہ سب ایسے بنیں گے, اور اس سے ہمارا یہ مقصد ہے اور یہ ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے, دیٹس آل. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ ساری فلمیں, ہم اس میں صرف پون کا کیریکٹر کرتے ہیں, ہماری کوئی اوقات, کوئی سمجھ, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے اور نہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یوز ضرور ہو جاتے ہیں بیکاز ہم نہیں جانتے. اور آپ کو رب کا جملہ سناؤں میں, اور تمہیں سکون کیسے آئے تم جانتے جو نہیں ہو. سمجھیے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر
5: रेडियो स्टेशन एट www.radioazar.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.